माँ फिर कल हूँ या ना। बचपन से ही हमें एक चीज तो सिखाई गई है, जब भी एग्जाम होता था और हमारा दिल नहीं करता था वो एग्जाम करने का, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा वो एग्जाम जल्दी से पास कर लो, फिर तो मजे ही मजे। बोर्ड का एग्जाम दिया तब भी हमें यही किया बोला गया कि ये कर लो, फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद आई ट्वेल्थ, फिर आई ग्रेजुएशन और डिग्री, और हमें इसी दौड़ में हम भागते रहे कि बस ये कर लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े। दोस्तों, मज़े वाली कोई चीज़ वो होती है जब आप उस समय को, उस टाइम को जीते हैं, और वही एक NRI की लाइफ है। हम लोग

मजे के लिए हम भागते रहते हैं, पर मजा वो है जो हम प्रेजेंटली जिस समय को हम जी रहे हैं। याद कीजिए जब हम वीजा का फाइल कर रहे थे या फिर हम पीटी दे रहे थे, तब भी हमें ये कहा गया था कि एक बार वहां पहुंच जाओगे तो मजे ही मजे। लेकिन असली मजा किस में है? उस समय को जीने में है, उन चुनौतियों के साथ जीने में है जिससे आपको एक नया स्किल मिलता है। मैं कहती हूं कि एनआरआई होना एक आर्ट ही है, क्योंकि इंडिया में जब भी थे हम तो हम यही फील करते थे कि वहां जाएंगे, वहां की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन जब यहां आते हैं तो चीजें बदल जी जाती। चुनौतियों का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, भले ही हम भारत में हो या हम न्यूजीलैंड में हो। हर चीज बड़ी ही डिफरेंट होती है। अब जैसे कल की ही बात लीजिए, मैं पामस्टर नॉर्थ की जो बारिशें हैं उसको एंजॉय कर रही थी और सडनली मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अरे आज तो थर्सडे है और आज तो मुझे कूड़े का डब्बा बाहर रखना होता है। तो मैंने बिन उठाया और अपने दिन की शुरुआत करी। बिन उठा के दिन की शुरुआत इस तरीके से करी कि मैं उसे घसीटते हुए ले गई और बाहर रखा। पर आपको पता है कि मेरा अटायर कैसा था? मैंने नीचे पजामा डाल रखा था और ऊपर रेनकोट। ये है एनआरआई की जिंदगी कि हर चीज को हमें खुद करना होता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बताया कि प्लम्बर जो है इतने पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने प्लम्बर के लिए क्या किया, उन्होंने अपने जो एकेडमी है, जो फ्री एकेडमी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी हमारा प्यारा यूट्यूब, उसमें से देखा कि जो नल है उसको चेंज कैसे करें और उसे वो खुद ही चेंज करने लग गए। यही है खूबसूरती एनआरआई की कि जब कोई चुनौती आती है तभी हम एक नया स्किल लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी अगर सोचें कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कि जब भी कोई भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको एक नया स्किल मिलेगा और वही स्किल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। तभी तो खुशी खुशी बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये किया ही हुआ है। और वो कैसे? वो मजे तभी आप लुटा सकते हैं जब आप अपनी चुनौतियों में अपना रास्ता खुद बनाए। दिस इज अ लाइफ ऑफ बीइंग एनआरआई।

बातें कुछ अनकही सी होने लगी और बातें कुछ अनकही सी कुछ ऐसी भी होती हैं जब हम न्यूजीलैंड में होते हैं और इंडिया से हमारे दोस्तों के हमारे रिश्तेदारों की बातें जो हम सुनकर हैरान हो जाते हैं. बहुत अजीब अजीब सी बातें आपको सुनने मिलती हैं. एक तो बात वही कि यार मज़े हैं तेरे, न्यूजीलैंड में रह रहा है, साफ जगह पे रह रहा है और डॉलर कमा रहा है. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है. लेकिन सेकंड चीज़ जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है. कहते हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो तुम लोग तो सबके सब गोरे हो गए होगे. भाई इनको अब कौन समझाए कि यहाँ धूप इतनी तेज है कि गोरे होने की बजाय हम लोग तंदूरी चिकन बन जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ ओजोन लेयर जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि जिसकी वजह से जो धूप है हमें बहुत ज़्यादा तीखी लगती है. और मैं कहूँगी कि 15 या 20 मिनट में अगर आप धूप में रहें तो आपको वो स्कार्स, वो जो निशान होते हैं टैनिंग के, वो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं. हाँ मैं मानती हूँ न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले, सनस्क्रीन लगानी पड़ती है. तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे उन सभी रिश्तेदारों के लिए जो मुझे कहते हैं कि न्यूजीलैंड जाके तो तू गोरी हो गई होगी, उसके लिए यही संदेश कि गोरी तो नहीं लेकिन हाँ चिकन तंदूरी वाली फील कभी कभी आती है जब हम शीशे में खुद को देखते हैं. और दूसरी बात ये कि बेटा कब सेटल हो गए, अब तो लाइफ में तुम्हारे मज़े ही होंगे. हम सेटल होना हो बट अगर आप रह रहे हैं यहाँ तो सबसे पहले जो आपको सेटल करना पड़ता है वो होती है यहाँ की घास. जी हाँ दोस्तों, जब हम एक घर में रहते हैं हमारे आसपास एक पूरा एक एरिया होता है जहाँ पे घास होती है और उस घास को 15 से 20 दिन में मोविंग करना पड़ता है, जिसके लिए या तो आप खुद करें या फिर आप बाहर पैसे दें. तो अपने सेटलमेंट का पता ही नहीं है क्योंकि हमें पहले घास जो है उसको सेटल करना पड़ता है. यही है खूबसूरती NRI बनने की कि आपको अपने छोटे छोटे काम जो है वो खुद करने पड़ते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे कामों में जो हुनर जो आपके हाथों में आता है वो काबिले तारीफ है. आपको सेल्फ मेड इंसान अगर बनाता है तो आपको NRI ज़रूर बनना चाहिए. इतना आप अपने घर से, अपनी भारत में रहकर वहाँ से नहीं सीखते जितना आप बाहर आके सीखते हैं. क्योंकि सही मायने में अभी तक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस देखूँ तो यहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट है और डिफरेंट कल्चर में सब जो है यूनाइट होकर साथ रहते हैं, यही खूबसूरती है. कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से मिलते हैं और सभी लोगों को पता है कि भारत में लोग दिवाली बनाते हैं, भारत में लोग होली बनाते हैं. मैं बात कर रही हूँ पामस्टन नॉर्थ से, तो हम पामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर पे इस तरीके के इवेंट

ट्रेंड्स हमेशा होते रहते हैं, जिसमें हम अपने भारत भारतीय होने के बावजूद भी और भी जो हमारे दोस्त हैं जो दूसरे कल्चर से हैं वो यहाँ आकर हमारे साथ हमारे त्योहारों को मनाते हैं। ये खूबसूरती है और यही प्यार है जो हम यहाँ आकर लेते हैं। तो कभी भी अगर ये सोचे कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कि ये जो वाई मी है इसने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें, खूबसूरत दोस्त आपको दिए हैं जो भारत में रहकर आपको शायद नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों, अब तो हुई हमारे रोने धोने की बात कि हमें यहाँ पे ग्रास काटनी पड़ती है, हमें यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कोई भी आप मेड रखने के हिसाब से नहीं कर सकते काम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं। और उन्हीं सब चीज़ों की कश्माकश में आप जब घुसते हैं तो आप बोलते हैं वाई मी, मैं ही क्यों। तो अब वाई मी को ट्राई मी में बदलने का सुनहरा अवसर आ चुका है। आज हम अभी छोटी छोटी उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप वाई मी को ट्राई मी में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जब बारिश में यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है और आप छाता लेकर जाते हैं, छाता लेकर आप गए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं छाता लेकर गई तो सामने एकदम तेज हवा आई और छाता उल्टा हो गया। तब मैंने खुद से पूछा वाई मी, बट अचानक से मेरे दिल में आया ट्राई मी, यानी ठीक है छाता मेरा खुल गया है, अब मैं भीग कर तो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उन चुनौतियों को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूं और मैं ऐसे ही अपने काम पे जाऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाई मी शिफ्टिंग टू ट्राई मी। और अब इसी के साथ दूसरा गाना जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत ही अच्छा गाना है। हर बार मैं कहती हूँ कि ये गाना जो है ये आपको उठकर एक साथ गाना चाहिए, क्योंकि ये गाना जो है ना मेरे दिल के करीब भी है और मोटिवेशनल भी है। चलिए सुनते हैं।

0: Community Notices on MPR.
1: The Amitabha Buddhist Centre hosts a drop-in meditation class every Wednesday, 7 till 8:30pm. Everyone is welcome. The class is hosted by Birgit Saunders and focuses on the Six Perfections, a peaceful path. The Six Perfections are methods for developing a stable, peaceful mind and overcoming negative mental habits. They are powerful techniques that can be honed in meditation and then integrated and applied in daily life. The Amitabha Buddhist Centre is at 174 Albert Street.
0: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
2: Manawatu Conversations, recollections of the past, opinions about the future. Local people remember and tell their stories. Manawatu Conversations every Tuesday at 3pm and repeated at 1pm on Saturdays. Don't miss it. And don't forget that the programme is also available on demand through the Manawatu People's Radio website, mpr.nz.
1: Collaborative Voices. Get the latest on the community and non-profit sector with Roz Rice from Community Networks Aotearoa in Wellington.
0: Collaborative Voices on Manawatu People's Radio, Mondays at 9am.
3: I have a question.
4: I wondered what draws you to these themes.
5: Did you deliberately...
6: At what point?
5: Do you agree...
3: Is it something desirable or not?
7: Why did you choose the title?
8: Does it drive the plot?
9: I was wondering how,
3: which,
5: what,
10: why.
11: Join us as some of the world's greatest writers answer your questions about their best-known books. World Book Club from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8am every day on MPR.
12: Sun Mitwa, tujhko kya dar hai? Apni hi dharti hai aur apna hi ambar hai. Aur har pariksha ko, har chunotiyon ko sirf is tarike se jiye ke hum usme aage badh sake, apne jeevan ko acha chala sake. To why me aur try me ke is shangharsh ke saath hum apni baat ko आगे बढ़ाते हैं दोस्तों ये तो सच है कि एनआरआई की जो लाइफ है वो वाकई में इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस है आप देखते हैं कि अरे वाह ये तो डॉल्फिन के साथ फोटो खिंचवा रहा है अरे वाह वहां पहाड़ कितने सुंदर हैं और सही मायने में देखा जाए तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि भारत में स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आप सामने आसमान को देख नहीं सकते बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है वहीं जब आप न्यूजीलैंड में अपने दोस्त की फोटो देखते हैं तो उसकी फोटो से ज्यादा आप ज़ूम करके आसमान देखते हैं कि ओ माय गॉड आसमान कितना ज्यादा साफ है और फिर आप अपने खुद के सपने बुनने लगते हैं कि चलो हम भी चलते हैं न्यूजीलैंड या हम भी चलते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहां जो है हमें ये सभी खुशियां मिल सके बट इसमें एक मजेदार बात क्या है इसमें मजेदार बात यह है कि हमारी जीवन जो है जितना ज्यादा आपको ग्लैमरस लगता है उतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन चुनौतीपूर्ण के साथ मैं एक शब्द और मचाना चाहूंगी वो है सबसे ज्यादा मजेदार होता है सोचिए कि आप जो इंसान इंडिया में खुद अपने हाथ में एक गिलास जो है वो पकड़ ना सकता हो वो यहाँ YouTube से देखकर नई नई चीजें सीखता है और उसका एक्सपेरिमेंट करता है तो ये खूबसूरती है एनआरआईज की जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ मिलकर दोनों मियाँ बीवी एक साथ मिलकर अपने जीवन को अच्छा भी बनाते हैं और साथ मिलकर सभी काम करते हैं चाहे वो ग्रास कटिंग ही क्यों ना हो वेल अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त का जब मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला ना कि तू तो डॉलर में कमा रहा है तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है और मुझे पता है कि ये चीज़ हम सभी के साथ होती होगी हमारे जो भारत में या और किसी जगह पे जो भी दोस्त है जब वो हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया में देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि वाह यार तेरी ज़िंदगी तो बड़ी ज़बरदस्त है तू डॉलर में कमा रहा है लेकिन उनको क्या पता मेरे सभी भाई बहन जो यहाँ पर पामस्टर नॉर्थ में हैं और न्यूजीलैंड में हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो वाकई में दिल में ये सोचते होंगे कि उनको क्या पता कि भले ही हम डॉलर में कमा रहे हैं लेकिन जा भी तो डॉलर में रहा है भाई जो टमाटर इंडिया में आपको बहुत सस्ते आपको इंडिया में मिल सकते हैं वो यहाँ हम 200 रुपये किलो में ले रहे हैं तो जितने हम कमा रहे हैं वैसा ही खर्चा भी है, क्योंकि हम इंडिया में आके तो टमाटर ले जा सकते नहीं है, स्पेशली न्यूजीलैंड और इंडिया का अगर फासला देखा जाए तो वो बहुत ही लंबा है। तो यही असली संघर्ष है, यही हमारी असली कहानी है, क्योंकि ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। वैसे ट्राई मी में सबसे बढ़िया चीज क्या है दोस्तों? दो चीजें हैं ट्राई मी में। सबसे पहले जो आपकी जिंदगी के चैलेंजेस होते हैं, आपकी चुनौतियां होती हैं, उनको आप इनवाइट करते हैं, उनको आप निमंत्रण देते हैं, उसको आप कहते हैं कि आजा, कोई परेशानी नहीं, मैं तेरे सामने हूं, चल देखते हैं कौन जीतता है, तू या मैं। तो आप अपनी सभी चुनौतियों में अगर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसको आप एक कंपटीशन की तरह देखने लगेंगे। और जब हम लोग कंपटीशन की तरह किसी चीज को देखने लगते हैं तो उसको जीतने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं। जब उसे पूरा जोर लगाते हैं तो डिफरेंट मेथड जो है हम उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि ये डिफरेंट मेथड ही जो है हमें इस कंपटीशन में जिता सकती है। और उससे ही आपका एक ऐसा क्लियर मेथड आपके हाथों में आता है जिससे हम ये समझ

सकते हैं कि हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चुनौतियों को जो है निमंत्रण देना शुरू कीजिए। चाहे न्यूजीलैंड में आपको कुछ भी करना पड़े, आप जीत सकते हैं, उसको पॉजिटिवली लीजिए।